0: रेडियो सारंग 107.8 FM जय हे
1: रेडियो सारंग 107.8 FM रंग रंगदा बदक इत्ते तुलु प्रस

0: निखिल के अंदर रेडियो सारंग 107.8 एफएम इनित तुलु कार्यक्रम को निखिल के मात्र एकला मोके दिंजी सुलमेलु इनित ई कार्यक्रम डे इंचिप डॉक्टर वामन नंदावर चावड़ी तुलु भवना मूलु तुलु साहित्य अकादमी वतिर्द आटिडुंजी कबिकोटा अंचने बूगु बुडुगडे कार्यक्रम ई लेसद कबिकोटोडु पालपडेना कबिकुलेना कबितेलेन केनुंद बरका கபிக்குலேனா கபித்ததா தா சுருத்தையக்க
1: இத்த நம்ம இனிதா கபிக்கூட்டதா உதிப்பன உதிப்பன மல்புனாரு அக்ஷதா ராஜ் பெர்லா கன்னடதா ஒக்க அஞ்சினி தொடுத்தா மாமல்ல சாகித்தி இனி சோஷியல் மீடியாட்ல பாரி பிரச்சல தடுக்குப்பு நினச்சினா கொஞ்சம் சட்டுவட்டிக்கேடு சட்டுவட்டிக்கேடு உப்பு நினச்சினா